0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस,
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: नमस्कार सुनने वाले दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। आजकल गर्मी के मौसम में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और जलन की शिकायत बहुत आम हो गई है। गलत खान पान और तनाव के कारण ये समस्या हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे, मनुष्य गैस्ट्रिक समस्या से बचने के लिए क्या करें, सटीक और व्यावहारिक जानकारी के साथ। ऋषि मीना, सबसे पहले समझते हैं कि गैस्ट्रिक समस्या क्यों होती है। ज्यादा मसालेदार तला भुना खाना, अनियमित भोजन, तेज चाय कॉफी, स्मोकिंग और तनाव मुख्य कारण हैं। बचाव के प्रमुख उपाय। पहला, समय पर और सही मात्रा में खाना। रात का खाना रात 8 बजे तक पूरा कर लें। भोजन अच्छी तरह चबाकर खाएं। ज्यादा खाने से बचें। छोटे छोटे अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना बेहतर है। दूसरा, पाचन को मजबूत करने वाले घरेलू उपाय। सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। जीरा, सौंफ या अजवाइन का पानी बनाकर पिएं। ये गैस और एसिडिटी दोनों में राहत देता है। अदरक का छोटा टुकड़ा या अदरक वाली चाय पाचन बढ़ाती है। दही और छाछ नियमित रूप से लें, लेकिन ठंडा न पिएं। तीसरा, खान पान में सावधानी। मिर्च मसाले, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स कम करें। फल जैसे पपीता, केला और अनार पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। रात में दूध में हल्दी मिलाकर पिएं, ये पेट की सूजन कम करता है। ऋषि मीना, चौथा, जीवन शैली में बदलाव। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें। तनाव कम करें, गहरी सांस लेने या योग का अभ्यास फायदेमंद है। रात को अच्छी नींद लें। धूम्रपान और शराब से पूरी तरह दूर रहें। महत्वपूर्ण सावधानी, अगर आपको बार बार एसिडिटी, उल्टी, वजन घटना या खून वाली उल्टी मल हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
1: डीएस साइंस अकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस अकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
0: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस अकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस अकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।

0: घर में कोई नहीं मान रहा है, तुम मान जाओ, भूल जाओ मुझे।
1: याद करोगी मुझे?
0: जब जब बारिश होगी तब।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके, इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज रेडियो डीएफ से आप?
1: फिल्म का नाम है दुश्मन और गाने के बोल है सच्चाई छुप नहीं सकती कभी कागज के बनावट के बोला।
0: ठीक है सर, सुना रहे हैं आपको आपकी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
4: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे रेडियो डीएस
4: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: हेलो हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग जी, नाम बताएं आपका।
1: मोनिका बोल रहे हैं सर।
0: मोनिका जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस पे?
1: सर, मैं

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983।
3: गुड मॉर्निंग सर।
4: गुड मॉर्निंग जी, नाम बताएं आपका।
3: सर मेरा नाम है अय्यूब सलमानी।
4: अय्यूब सलमानी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: मैं चूली गेट गंगापुर सिटी से सर।
4: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
3: सर आज गाना सुनना चाहते हैं मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं।
4: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना।
3: ओके सर, थैंक सर।

0: हेलो हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: सर नाम आसाराम जागा है।
1: आसाराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
1: बताएं आसाराम जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं रोऊं राधा तेरे लिए।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश।
0: थैंक यू सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:21 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: जी नाम बताएं सर।
1: जी राधे राधे सर।
0: राधे राधे जी, नाम बताएं आपका।
1: राम सिंह है नाम तो मेरा।
0: राम सिंह जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं कर रहा हूँ गंगापुर सिटी से।
0: बताएं राम सिंह जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: ये पाकीजा फिल्म का गाना।
0: कौन सा गाना है सर? हेलो,
1: मौसम है आशिकाना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक।

0: 89.6 DSFM हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है सुनहरे का

0: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: सर आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू लवानिया जी, आगरा उत्तर प्रदेश में कैसा मौसम है अभी फिलहाल?
1: बहुत गर्मी है सर, भयंकर धूप है और काफी तेज गर्म हवाएं चल रही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज के वीडियो से?
1: फिल्म का नाम है सर यादों की बारात, चुरा लिया है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पर, ये बेहतरीन सा सॉन्ग।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्कार
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर।
1: सर मेरा नाम है जयकिशन।
0: जयकिशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं डीएस से।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: सर मैं वो जोरा जबी सॉन्ग।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको जोरा जबी सॉन्ग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।

0: जी नमस्ते, नाम बताया सर। सर बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको जोरा जगी सॉन्ग। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताया आपका।
1: नमस्कार सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताया सर आपका।
1: नाम बाबू खान।
0: बाबू खान जी पता है कितना समय से कहते हैं।
1: हमने देखी है ना खुश महक सी खुशबू।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से गाना।
2: Radio DS. सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे हर बीट।
2: नमस्ते सर, चौधरी बोल रहा हूँ।
3: जी नमस्ते चौधरी जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक है सर, गर्मी थोड़ी ज्यादा है।
3: अच्छा गर्मी ज्यादा है, बिल्कुल रहनी भी चाहिए सर गर्मी, गर्मी से ही तो मौसम बनता है बारिश का। पता है आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: माचिस की जरूरत नहीं, वैसे आग जल रही है सर।
3: बिल्कुल बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
2: जी मेरा किसी सिगरेट अपने आप जल गई हो।
3: अच्छा बीड़ी जलाई लो सही है। बिल्कुल सुना रहा हूँ।

0: जी नाम बताएं।
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
1: मेरा नाम है महेंद्र कुमार।
0: महेंद्र, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुनना सर मुझे, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर इसकी मार कहीं न जा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं, दलाल फिल्म का ही गाना।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से सुहानी सुबह में प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
1: जी नमस्कार रूपचंद जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप रेडियो डीएस से।
0: आज जो गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है बरसात की रात और गीत के बोल है सारी दुनिया में ना मिलेगा मेरे जैसा वंडरफुल छोकरा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का एक।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: आशीष।
0: आशीष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: चम्मा चम्मा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का एक।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर
0: जी। मेरा नाम उत्तम कुमार है।
1: उत्तम कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर से बात कर रहा हूँ।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
0: गाने का नाम है हनी सिंह का है, चार बोतल बोध का।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ उत्तम जी आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: रोहित गुजर।
1: रोहित जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: बामनगढ़।
1: बताएं रोहित जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: चांदनी रात में गुल चलाकर डीजे रिमिक्स।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: दुनिया हसीनों का मेला।
1: दुनिया हसीनों का मेला बिल्कुल सुना रहे हैं गुलशन जी आपको, आपकी समय इसके बैठने का।

0: हेलो हेलो
1: जी मैडम,
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा शेखी नाम है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: ये कोलीपाड़े से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरे हर सवाल का जवाब बन जाऊंगी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिणाम
1: थैंक यू मैम।
0: यू वेलकम।

0: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।
1: रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
5: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: नाम सत्तू।
1: सत्तू जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: रेलवे फाटक करौली।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: वो गाना है ना, लौट के फिर ना आऊंगी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा गाना।

0: पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: हेलो नमस्कार गंगापुर सिटी वासियों, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़पलक शर्मा के साथ एंजॉय पर आवर फुल मोमेंट।
1: रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
5: 89.6 पे रेडियो डीएस,
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टोकरेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
1: नमस्कार सुनने वाले दोस्तों,
2: हेलो मैडम, नरेश कारवार नाम मेरा।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: कमालपुरा से बात कर रहा हूँ।
3: सुनना चाहोगे?
2: पीले पीले वो मेरे जानी।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
2: जल्दी मैडम,

0: हेलो
1: नमस्ते सर।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं।
1: मोहम्मद यासीन।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: पाल से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना है सर
0: जी,
1: गाना है सर शिक्षा ही अनमोल है, धर ले ध्यान पढ़ाई में।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना।

0: हाँ जी मैम, आपका
1: शिवम मीणा
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? राधे की सी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सजा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर से। आदर्श मेरा
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: फिर भी पसंद तो तेरी मोल।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम, नमस्कार।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: रतन लाल बोल रहा हूँ, महू कला से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आइए बहारे मिटे डुलना सितम, प्यार का जमाना हुआ दूर गुए गप।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सुनना कुछ ब्रजमन महावर।
1: कौन से गाने सुनना चाहोगी?
0: मैं ना तू तुम ना तो रब
1: हो। तो क्या सुना रहे हैं आपकी फिर?

0: हेलो
1: हाँ जी मैम, क्या आपका
0: मीनाक्षी
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सूरज हुआ मंथम, चांद जलने लगा।
1: लेकिन हम सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना।

रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, जरूरत नहीं होती। चुप तो नहीं रहा, ऐसे रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते, प्यार के रिश्ते होते, मोहब्बत के रिश्ते होते। और एक बात और बता दो, आपकी हलवाई की दुकान तो मैं हड़प कर ही रहूंगा।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: अमन मीणा।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: नतिया कॉलोन से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गुलजार।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: लिए मैडम असली रिश्ता का तना इबरा पटेगा।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: यार का
2: राजकुमार,
1: कहाँ से बात कर रहे?
2: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: यारी।
1: वो किस सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? सिंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: यार की गली में मर जाना इश्क है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आप।

0: जी नाम क्या है आपका?
1: आमीन साहब पिघलौदिया।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: बैरंगी
0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अंश कुमार माली।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? हेलो।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: संध्या सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जहांपुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तू भी रोएगा माही, तू भी रोएगा।
0: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: मेरा नाम है रोशन झा, मैं बोल रहा हूँ मदीना मस्जिद से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: एक नंबर जादूगर भैया, सोई हुई भैया हो गई आज रात, अब क्या जानोगे?

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम अमन गुजर है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तो माने ना मन मेरा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

कर्नाटक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गौरव।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सिद्धू मूसे वाले का हूँ, तेरे से जवानी नई नई चढ़ी है।
1: ओके सर।
2: सिद्धू मूसे उस टाइम

0: हेलो
1: हाँ जी नाम क्या है आपका?
0: हेलो
1: हाँ जी नाम क्या है आपका?
0: नरेंद्र।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: जंगलपुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: निशान।
1: ओके तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, अभी आपने सुना हेलो वॉइस कार्यक्रम और थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। दोस्तों नए तराने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे हम खट्टी मीठी और ज्ञानवर्धक बातें, साथ साथ सुनाएंगे आपको बेस्ट न्यू सॉन्ग।
1: रेडियो DS
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं निशा शर्मा जी मेहमान के रूप। निशा शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्ते सर।
3: निशा जी, सबसे पहले तो हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपका परिचय जरूर बताएं।
4: हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा शर्मा है, मैं गंगापुर सिटी से बिलोंग करती हूँ।
3: निशा जी, आपने एजुकेशन में क्या कर रहा है?
4: जी सर, मैंने एमए पीजीडीसी एमसीए किया हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव 10 साल का है।
3: क्या बात है। अच्छा, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप?
4: जी, मैं बचपन पब्लिक स्कूल है अपना, उसमें मैनेजमेंट में हूँ।
3: अच्छा, मैनेजमेंट में कौन कौन से कार्य देखने होते हैं आप?
4: जी सर, उसमें बच्चों का पूरा देख रेख की जाती है, काफी सारे वर्क होते हैं।
3: अच्छा, आज हम आपके जो प्यारे प्यारे लिसनर हैं, हमारे जो राजस्थान और राजस्थान के अलावा सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मतलब सारे क्षेत्र में सुने जाएंगे, तो इसके लिए हम बहुत सारे पारिवारिक जो गतिविधियां हैं उनका संचालन और उन चीजों का कार्यक्रम की देखरेख के माध्यम से चलते हैं। तो आज सबसे पहले आप हमारे जो श्रोता है उनको बताएं, गर्मी के मौसम में एक महिला की जो परिवार में देखरेख होती है वो कैसे रखें और परिवार स्वस्थ बना रहे?
4: वैसे तो सर काफी सारी चीजें होती हैं जो महिलाएं गर्मी में अपने परिवार का किस तरीके से ध्यान रखती है
3: जी,
4: बट मैं कुछ टिप्स आपको या दोस्तों को बताना चाहती हूँ जो मुझे सुन पा रहे हैं
3: जी।
4: फर्स्ट तो हमें घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: क्योंकि गर्मी में धूल, गंदगी और कीटाणु तेजी से फैलते हैं
3: जी,
4: इसलिए घर की नियमित सफाई करें
3: जी।
4: रसोई घर में पानी रखने के बर्तन और शौचालय को विशेष रूप से हमको साफ रखना चाहिए।
3: बिल्कुल, शुद्धता है वहाँ देवता भी वास करते हैं।
4: जी सर, जी सर। घर में पर्याप्त हवा और रोशनी आने की व्यवस्था की जाए।
3: बिल्कुल।
4: दूसरा, हमको स्वस्थ और शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए, जो स्वच्छ पानी होता है हमारा।
3: बिल्कुल, तभी तन मन स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल
4: जी सर, बिल्कुल। गर्मी में शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है गर्मी में।
3: बिल्कुल, सभी सदस्यों को हमारे द्वारा, बड़े बुजुर्ग चाहे बच्चे हो, उनको पानी की भरपूर मात्रा दें।
4: जी सर, परिवार के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रेरित करना चाहिए महिलाओं को।
3: बिल्कुल।
4: और पानी को हमेशा ढककर रखें, संभव हो तो उबाल कर या उसको फिल्टर करके यूज में लेना।
3: बिल्कुल, पानी से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, तो अगर पानी जैसा बता रहे अगर ऐसा पिया जाए एक बीमारी से भी बचा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे जैसे पेट की प्रॉब्लम या बड़े बुजुर्ग पानी कम पीते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में सभी मेरे श्रोताओं को ये अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।
4: जी सर, पौष्टिक भोजन हमेशा तैयार रखें
3: जी,
4: गर्मी के मौसम में हल्का और हमको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: आशा जी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को कि जब भी हम धूप में निकले उससे पहले खाना खा के निकले बाहर, यानी 10 या 11 बजे से पहले पहले गर्मियों में तो काम कर लेना चाहिए बाजार का, और 11 बजे बाहर तो निकलना नहीं चाहिए, और यदि ज्यादा जरूरी हो तो गमछा स्कार्फ आदि लगा के निकले।
1: जी सर, गर्मी में सबसे ज्यादा हमको दही या छाछ, सलाद और अंकुरित अनाज को उपयोग में लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत
1: तला और भुना मसालेदार भोजन हमको कम उपयोग में लेना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, देखो मसालेदार अगर ज्यादा मसाले खाएंगे तो गर्मी में हमारी बॉडी को दिक्कत हो सकती है।
1: जी सर,
0: इसलिए जितना हो सके छाछ दूध और भोजन में हम खरबूजे, तरबूज, नारियल पानी और जो भी फल फ्रूट ले सकते हैं।
1: भोजन को हमेशा सुरक्षित रखें क्योंकि गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: बचा हुआ भोजन को हमेशा ढककर रखें, समय पर उसका उपयोग करें। खराब या बासी भोजन खाने से हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है।
0: बिल्कुल सही बात है, तो भोजन को हम कोशिश यही करें परिवार के सभी सदस्यों को सुबह शाम या दोपहर का जब भी लेते हैं तो ताजा भोजन बनाते समय ही खा लेना चाहिए।
1: जी सर बिल्कुल। दोस्तों, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए गर्मी के मौसम में।
0: बिल्कुल सही बात है, छोटे छोटे बच्चे तो टाइमिंग नहीं जानते कि कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, तो उनको तो महिला ही बताएगी ना कि कौन से समय पर उनको भोजन देना है। और देखो, महिला जो एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, महिला चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, उनको महिलाएं चलाती है, जब भी तो महिलाओं को गृह मंत्री कहा जाता है।
1: जी सर बिल्कुल।
0: अच्छा, और कौन से टिप्स है?
1: जी सर, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, दिन में कम से कम एक बार स्नान करें।
0: जी,
1: हमेशा हाथों को साबुन से धोने की आदत डालें।
0: बिल्कुल, बहुत
1: विशेषकर भोजन बनाने और खाने से पहले, ताकि कोई भी कीटाणु हमारे अंदर न जाए।
0: बिल्कुल सही है, कीटाणु अगर आएंगे तो हमारे जो शरीर की एक्टिविटीज है उनमें जाएंगे और हमें बीमार या रोगाणु ग्रस्त कर देंगे।
1: जी बिल्कुल, हीट स्ट्रोक से बचाव, दोपहर के समय तेज धूप से बाहर जब भी हम निकलते हैं, यदि बाहर जाना हो तो हमको छाता या टोपी या गमछे का उपयोग हमेशा करना चाहिए।
0: बिल्कुल निशा जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने, जब भी हमको बाहर निकलना होता है तो हम सबसे पहले हमारी जो तेज धूप होती है या लू के जो थपेड़े होते हैं इनसे सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी होता है और हमें करना भी चाहिए। कभी भी हम कूलर की ठंडी हवा में या एसी की हवा में बैठे हैं तो तुरंत धूप में नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो चक्कर आने की प्रबल समस्या रहती है। और कोशिश यही करें कि हम ज्यादा से ज्यादा छाया में चलें, छाया में काम करें।
1: जी सर बिल्कुल, नींबू पानी समय समय पर लेते रहें, नारियल पानी जैसे भी हमारे पेय पदार्थ उनका उपयोग हमको ज्यादा करना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: ताकि हमारा शरीर हमेशा ठंडक प्रदान करे।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे नियमित श्रोताओं को दी निशा जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुर में गाना सीखिए पाधनीसा ऐप के
1: सुनते
0: साथ।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: नमस्कार सुनने वाले दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान के अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। आजकल गर्मी के मौसम में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और जलन की शिकायत बहुत आम हो गई है। गलत खान पान और तनाव के कारण ये समस्या हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मनुष्य गैस्ट्रिक समस्या से बचने के लिए क्या करें, सटीक और व्यावहारिक जानकारी के साथ। ऋषि मीना, सबसे पहले समझते हैं कि गैस्ट्रिक समस्या क्यों होती है। ज्यादा मसालेदार तला भुना खाना, अनियमित भोजन, तेज चाय कॉफी, स्मोकिंग और तनाव मुख्य कारण हैं। बचाव के प्रमुख उपाय। पहला, समय पर और सही मात्रा में खाना। रात का खाना रात 8 बजे तक पूरा कर लें। भोजन अच्छी तरह चबाकर खाएं। ज्यादा खाने से बचें। छोटे छोटे अंतराल पर थोड़ा थोड़ा खाना बेहतर है। दूसरा, पाचन को मजबूत करने वाले घरेलू उपाय। सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। जीरा, सौंफ या अजवाइन का पानी बनाकर पिएं। ये गैस और एसिडिटी दोनों में राहत देता है। अदरक का छोटा टुकड़ा या अदरक वाली चाय पाचन बढ़ाती है। दही और छाछ नियमित रूप से लें, लेकिन ठंडा न पिएं। तीसरा, खान पान में सावधानी। मिर्च मसाले, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स कम करें। फल जैसे पपीता, केला और अनार पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। रात में दूध में हल्दी मिलाकर पिएं, ये पेट की सूजन कम करता है। ऋषि मीना, चौथा, जीवन शैली में बदलाव। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें। तनाव कम करें, गहरी सांस लेने या योग का अभ्यास फायदेमंद है। रात को अच्छी नींद लें। धूम्रपान और शराब से पूरी तरह दूर रहें। महत्वपूर्ण सावधानी, अगर आपको बार बार एसिडिटी, उल्टी, वजन घटना या खून वाली उल्टी मल हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
0: रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए, दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

दोस्तों अभी आपने सुना, दोस्तों अभी आपने नए तराने कार्यक्रम थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर रहूँगा आपका मनपसंद कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपके रेडियो दोस्त RJ फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू वे गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो DS पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल
3: डीएस 89

फोन रखे, चाय तो आ गई, पी भी ली। और क्या, तुम्हारे खीर मोने नहीं आए थे?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं, मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
1: दोस्तों भाग तो चुका है 4:29। गुड इवनिंग दोस्तों भाग तो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का। आप थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टूट कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। और दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: जी मैम।
1: गुड इवनिंग सर। हेलो,
0: मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है क्रिमिनल।
1: गाने के बोल?
0: तुम मिले दिल खिले।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, टेक केयर।

0: 14 निवेदन कर रहा हूँ महावीर जी से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गाना तुझे देख के दिल मेरा डोल दे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: साबिर बोल रहा हूँ, दशहरा मैदान गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: आवाज देकर हमें तुम बुलाओ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: तू करके जरा इशारा, ले जाऊं तुझे उठा।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गुलशन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फूल कभी जब बन जाए अंगारा।
0: कौन सा?
1: फूल कभी जब बन जाए अंगारा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: बन जाए अंगारा। फूल कभी जब बन जाए अंगारा।
1: हेलो,
0: बिजली बन के गिरे वो।
1: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: नाम राधिका चावला।
1: राधिका जी, कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? मैम कौन?
2: बैंड सॉन्ग।
1: ओके मैम,

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: बाबू खान।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये किसने गीत छेड़ा?
0: कौन सा सर?
1: ये किसने गीत छेड़ा?
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सर का नाम है इज्जतदार और गाने के बोल है तुमको देख के झूम गया।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन
0: जी। वेलकम सर।

0: आई लव यू यार बाबा बेटे।
1: हेलो, आपका नाम क्या है? आपका
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आई लव यू यार बाबा बेटे।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पड़ेगा

0: डेंटी पोक्चर खराब हो गया क्या ये? इसका मतलब ये कारस्तानी तुम्हारी थी?
1: कारस्तानी नहीं, बदला कहो बदला। तुमने मुझे लल्लू बनाया, मैंने तुम्हें लल्लू बनाया, हिसाब खत्म, खाता बंद।

0: जी आओ आ जाओ।
1: हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी नाम का? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? हेलो हेलो। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी नाम क्या है आपका?
2: मोहित
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हो?
2: सिंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: चांदनी रात में गोरी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम गौरीशंकर मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये ब्राह्मणी होता।
0: ओके सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोनिका।
1: मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: पत्थर के सनम तूने हमसे जब मिलना मिलाना छोड़ दिया।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ट्यून इन कर रखा है आपने रेडियो डीएस 89.6। और इस वक्त अगर आप गंगापुर सिटी में हो और मुझे सुन रहे हो गाड़ी चलाते वक्त, और अगर गाड़ी स्लोली चला रहे हो तो शुक्र मनाओ कि आप गंगापुर सिटी राजस्थान इंडिया में हो, क्योंकि इस वक्त अगर आप कनाडा में होते तो आपका चलान कट सकता था। बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा, कनाडा का ये रूल है कि वहां अगर आप बहुत धीमे गाड़ी चलाते हो, स्लो गाड़ी चलाते हो, तो आपका टिकट यानी कि चलान कट सकता है। लेकिन फिलहाल गानों का चलान नहीं कटने वाले, क्योंकि अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए सिर्फ रेडियो डीएस 89.6 पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

0: कई बार मैं सोचता हूँ कि काश मैं घूंगा होता तो फिर ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और मैंने गूंगा नहीं घोंगा का, घोंगा इज ए हिंदी वर्ड फॉर स्नेल्स, और स्नेल क्यों बनना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इनके पास एक ताकत है जो हम सब चाहेंगे कि काश ये ताकत हमारे पास भी होती। अब आप बोलोगे अरे भाई साहब स्नेल इतना छोटा सा स्नेल, इसके पास कौन सी ताकत? भैया सोने की ताकत। ये 3 साल तक बिना उठे, बिना आंखें खोले, बिना पलके झपकाए भैया सो सकते हैं। काश ये ताकत मेरे पास भी होता, आपके पास भी होता, पर फिलहाल मेरे पास एक ताकत है आपके लिए। अमेजिंग बैक टू बैक गाने प्ले करने वाला हूँ मैं रेडियो डीएस 89.6 पे,
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी की धरकर
1: बस बस बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस, और क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपनी बातें सुनना। जब भी मैं आता हूँ यार ये गाने रुक जाते, पर गाने आपके लिए प्ले करो। उससे पहले आज का शो यही तक था। जाने से पहले यही कहूंगा कि नफरत भी नहीं है तुमसे, गुस्सा भी नहीं हूँ। ओहो, नफरत भी नहीं हूँ तुमसे, गुस्सा भी नहीं हूँ, और तुम्हारा जिंदगी का भी हिस्सा भी नहीं हूँ। हाय हाय हाय, इतना क्रिंज पॉसिबल नहीं है, पर अमेजिंग गाने सुनना पॉसिबल है। हां जी, तो कल फिर मिलूंगा सेम जगह सेम टाइम। फिलहाल सुनते रहो 89.6 रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: समाज को अच्छा बनाने के लिए हमें खुद को अच्छा बनाना होता है। मैं हूँ आरजे खुशी। नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो, और हर सुबह की तरह आज भी मेरी सोच यही है कि मुझे अपने आप में एक थोड़ा सा बदलाव करना है, लेकिन अकेले नहीं, आप लोगों के साथ मिलकर। आज मैंने ये पढ़ा कि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी सहायता करता है। यानी कि मान लीजिए आपको पैसे चाहिए तो आप किसी ऐसे इंसान की मदद कर दीजिए जिसको आर्थिक सहायता की जरूरत है, उससे आपकी भी मदद जरूर होगी। तो ये मत सोचिए कि किसी की मदद करके आपके पास से कुछ कम होगा, क्योंकि जब भी आप किसी की मदद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में वो चीज बढ़ती ही जा रही है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं ना, तो जब ठंड होती है और मैं गरीबों में अपने कपड़े दे देती हूं ना, तो मुझे हर बार लगता है कि मेरे पास उतने ही कपड़े वापस आ जाते हैं। कहां से कैसे ये समझ नहीं आता, लेकिन मेरे पास से कभी कुछ खत्म नहीं होता। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: ये जो तेल होते हैं ना, ये वरदान होते हैं। मैं हूँ आरजे खुशी, और सर्दियों में एक तेल ऐसा है जो आपके जोड़ों के दर्द को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, वो है बादाम का तेल। बादाम का तेल अगर आपके घर में है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घुटनों पे लगाने के लिए, या फिर अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं या काले धब्बे आपके पड़ गए हैं चेहरे पर, या फिर कहीं भी आपके जैसे घुटनों का रंग काला है या कोहनियों का रंग काला है, तो उसको साफ करने में आपकी मदद करेगा बादाम का तेल। इनफैक्ट रिलैक्सेशन थेरेपी में भी ये काम लिया जाता है, यानी कि जब आप बहुत थक गए हो, आपको रिलैक्स करना हो, तो पूरे शरीर में बादाम के तेल की मालिश करके कुछ देर सो जाएं और फिर फर्क देखें। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए, फायदे होने चाहिए भैया। ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो DSR, फायदे होने चाहिए किस चीज के? गूगल मैप्स के। फिलहाल भैया आज का शो यही तक था, लेकिन जाने से पहले गूगल मैप्स ने एक नया फीचर लॉन्च किया है सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए, जो हमारे भैया पेट्रोल और डीजल और फ्यूल के पैसे बचाएंगे हमारे लिए इजी रास्ते गूगल मैप्स पे बता के। ये वही गूगल मैप्स है भैया जो थोड़े दिन पहले मैं गंगापुर सिटी से मैं जयपुर गया था, तो मुझे 700 मीटर पे कहीं लेफ्ट लेना था और गूगल मैप्स ने इतना नहीं बताया कि भाई साइड वाला रास्ता ले लो। मैं फ्लाईओवर ले लिया मैंने और 15 किलोमीटर आगे जाके मैं उतरा। वाह वाह वाह वाह गूगल मैप्स वाह। लेकिन आप भैया, आपको मैं ऐसे स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं डालूंगा, क्योंकि गाने सुन के भैया रिलीफ मिलता है। बैक टू बैक कुछ अमेजिंग गाने आपके लिए 89.6 रेडियो DS पे।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। दुनिया में कई फनकार पैदा हुए और गुजर गए, लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी हैं जो अपने काम से अमर हो गए और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे बरसों बाद भी भूल पाना सभी के लिए नामुमकिन है। कुछ ऐसे ही थे रिदम किंग और ताल के बादशाह कहे जाने वाले ओपी नैयर साहब। नैयर साहब ने न जाने कितने गानों में अपने संगीत का जादू बिखेरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो फिल्मी दुनिया में संगीतकार बनने नहीं बल्कि हीरो बनने आए थे, लेकिन उनको रिजेक्शन मिलने लगा। रिजेक्शन के साथ उनको सलाह मिली कि कुछ और करो। कुछ और के नाम पर एक संगीती था जो वो थोड़ा बहुत जानते थे, तो हारमोनियम से दोस्ती बढ़ाते हुए उन्होंने संगीत का जादू चलाना शुरू किया। गुरुदत्त की फिल्मों के बाद तो उन्होंने कभी आर कभी पार, येलो मैं हारी पिया और बाबूजी धीरे चलना गीतों से धूम मचाई। ओपी नैयर का नाम फिल्म जगत में चल पड़ा। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: बाब

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। ओपी नैयर को संगीत की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। उनके संगीत और ताल ने बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसी छाप छोड़ी है कि संगीत प्रेमी आज भी उनके मुरीद हैं। वो अपने जमाने के सबसे महंगे संगीतकार थे। वहीं स्वर्ण कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर के स्वरों का जादू भी हर तरफ बिखरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संगीत का अपार ज्ञान रखने वाले दो महान गायकों के सुरताल कभी एक नहीं हुए। बड़े से बड़े संगीतकार लता मंगेशकर के साथ काम करने के लिए बरसों इंतजार करते थे, लेकिन ओपी नैयर ने कसम खा ली थी कि वो लता के साथ कभी गाना नहीं गाएंगे, ना ही उनसे कभी अपना गाना गाने के लिए कहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच, ये आपको बताऊंगी, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

दोस्तों रात्रि के 11 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा सुबह इसी वक्त आपके साथ आपका मनपसंद कार्यक्रम। आज की सभा का यही समापन करते हैं, प्रातः 6 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।

सहारे के सहारे बाबा श्याम, जिनकी महिमा पूरी दुनिया जानती है कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। और जो लोग भी खाटू धाम में खाटू नरेश का दर्शन करने जाते हैं, वो बाबा का अद्भुत सुंदर रूप देखकर खुशी से झूम उठते हैं। बाबा का मन मोहने वाला रूप बड़ा ही सुंदर लगता है।

मतलब की अब यारी है, किस पे भरोसा करें यहाँ पर, झूठी दुनियादारी है। दुनिया के लगभग रिश्ते मतलब से ही बनते हैं, लोग यहाँ एक दूसरे को बस जरूरत पर ही याद करते हैं, मगर खाटू नरेश बाबा श्याम, जिनको जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है, बाबा श्याम उसकी

बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम की इस खास बात को जानते हैं कि बाबा को मनाने के लिए, बाबा की कृपा पाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उन्हें तो बस सच्चे हृदय से पुकारो, वो आपके हो जाते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि भाव के भूखे हैं मेरे खाटू नरेश

बाबा श्याम होते हैं और वो कहते हैं ना कि अच्छी संगत में कोयला भी हीरा बन जाता है। और बाबा की संगत में जो भी रहते हैं उनका असंभव काम भी संभव हो जाता है। सूखी बगिया में भी बाबा फूल खिलाते हैं।

अपने भक्तों को बाबा श्याम किसी भी तरह की कमी नहीं होने देते हैं। बाबा श्याम की कृपा हो जाए तो रंग भी राजा बन जाता है, विपन्नता से संपन्नता आ जाती है। बाबा श्याम के भक्त सच्चे हृदय से बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और कृपावान बाबा अपने भक्तों की झोलियां

खाटू नरेश के संगत में जो भी रहते हैं, उनकी भक्ति में जो भी रहते हैं, उनकी पूजा में जो भी रहते हैं, वो हमेशा ऊर्जावान और प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भी श्याम नाम की ज्योति जलती है, खाटू नरेश की कृपा उस घर पर बरसती रहती है। खाटू वाले के भक्त और उनका परिवार हमेशा खुश और